0: need this.
1: You know, as a good doctor, aapne nubs pakad li audience ki. What inspired you to make a film on Neem Karoli Baba and this name, Hanuman Ansh?
2: So, Neem Karoli Baba himself, so after finishing my MBBS, I met with a sort of a miraculous event, which I today call Leela, because miracles happen at instants and Leelas happen over the period of multiple years and decades. Maharaj's, I was doing my first job in Haldwani, and then our car, a few friends, we were traveling to random places near Nainital, and our car suddenly stops at a place, and then when the rain stops and you know the sunlight comes, because we were not able to see anything before, I opened my door and my door opens under Kachi Dham's gate, and that intrigued me so much that it was literally an invitation inside the temple.
1: Wow.
2: And from that day onwards, I've been following this. So I'll say I believe that Maharaji wanted me to make this film, and he kept guiding me and kept putting me in situations where I had to find a unique way to get out of that situation, and always a unique reaction which came inside my mind, and then I kept following those paths. I'll completely, you know, in a very, very surrender mode, I always say this, that it is Maharaji's guidance under which we made this film and probably where
1: it
2: reached.
1: Kya baat hai, Poorn Samarpad. Matlab devotion, aastha aur Poorn Samarpad. Ishwar ko paane ke liye isse zyada achha marg kya ho sakta hai? But tell me this, sir, from the sets to the music to the storytelling, how much of this is your spiritual journey, your spiritual experience that went into the making of Hanuman Ansh?
2: So when I was very young, I was 22 or 23, I was going through some basic health issues, and my mother tells me that you need to basically meditate and you need to do dhyana. And my mother has been a constant source of spiritual information all through my life. And she keeps, you know, calling me in every monthly or two monthly, and she will give me a lowdown of what all she got to know about Kriya Yoga and this and Dhyan and Kundalini, all of that. So because of her constant, you know, sort of a unke nirantar prayas se aisa hota raha ki mere andar jo spirituality wo hardam grow karti rahi, aur maine bahut sari cheezein khud bhi dhyan karte waqt jo bhi experience kiya. और वो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव कराता है कि देयर इज दिस वर्ल्ड जो आपके अंदर ही है, जो आपके इनसाइड ही है, जो आपके आपके आपके बाहमुखी जहाँ होके अंतर्मुखी होने से, या अंतर्मुखी होने का मतलब कहने का मतलब नॉट एज अ नेचर, बट आपके अंतर अपने अंतर को देखने को
1: पहचानने में
2: पहचानने आपकी जर्नी जो है ना, वो अंदर भी बहुत बड़ी जर्नी छुपी है जिसको स्पिरिचुअल जर्नी हम बोलते हैं. अमोन, आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारा इस बारे में कॉन्वर्सेशन में मिलेगा.
1: नहीं, बहुत से मेरे मित्र ये बता भी रहे, और माँ सोचिए ना कि हमारी संस्कृति में कौशल्या माँ, देव की माँ, यशोदा माँ, जीजाबाई माँ, माँ की कितनी बड़ी भूमिका है पुत्रों को आगे ले जाने में और उनके उनके जीवन को संवारने में.
2: जी, तो वो उसी उसी लय पे और उसी जो है ना उसी तारतम्य में मैं आगे बढ़ता रहा, और बहुत चूंकि मैं अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, और बुंदेलखंड में मैं पैदा हुआ, और बुंदेली गीतों से मेरा अपना भी बहुत नाता है, और मैं हरदम जो भी मैं कंटेंट लिख रहा था या मैं डायरेक्ट करने वाला था उस समय कहीं ना कहीं वो बुंदेल के आलाखंड और बुंदेल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं इनकल्केट करना चाहता था. और साधु तिवारी जो मेरे मित्र भी है, और सुनील लोधी जिसको मैंने फाइंड किया ऑन इंटरनेट, and I called him to the same office where we're sitting, where I'm talking from. Overnight, I basically asked him for the songs, and this one I really loved. And we recorded the very next day, because he was supposed to go and go back to his hometown by a train. So in half an hour, 45 minutes, we recorded, and this became the biggest song, I mean, you can say, today.
1: Can I request you, when it comes out, when you sing it, it comes out from your soul, you know. Can you, for the benefit of our viewers, sing the lines of Ma Parvati, Parvati for us?
2: Alright. Jab jid pe aa gayi Parvati, Parvati, Parvati, samjhane pahunche Saptarishi, Saptarishi, Saptarishi, काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे भर के लाने, ऐसे भर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ, शंभो शिव शंभो
1: शिव शंभो शिव शंभो. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट एक्चुअली enters your soul. It's so beautiful. और आप बिल्कुल दिल से ये गा भी रहे हैं. But you know, since you're a doctor and since you said you know health, माँ ने जो आशीर्वाद दिया, क्योंकि I at least believe you know ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा. Is that also your life story? Chanting Lord Hanuman's name destroys all pain, all diseases. That's the message.
2: Yes. भगवत भक्ति में और हनुमान जी जो है बहुत पिविटल रोल प्ले करते हैं. जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत मैं आज्ञा बिन पैसारे. एज एन आप उनकी उनकी भक्ति उनके उनसे परमिशन लिए बिना आप जा नहीं सकते. एज अनदर लाइन कॉल्ड राम रसायन तुमरे पास, आपके पास ही फॉर्मूला है.
1: सदा रहो रघुपति के दासा.
2: फॉलो अप लाइन इज तुमरे भजन राम जी को पावे. तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो पहले तो आप भक्त होता क्या है ये समझोगे, क्योंकि भक्ति क्या होती है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो. अगर आप भक्ति सीखोगे नहीं तो आप भक्ति में डूबोगे कैसे. तो वो आपके सबसे आइडियल टीचर भी हैं. और चूंकि वो भगवान शिव के स्वयं रुद्र अवतार, ग्यारहवें रुद्र अवतार हैं, और जैसा बोला जाता है कि आप निरंतरता में किसी चीज का सुमिरन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर एज ए निरंतरता में हनुमत बीरा. जैसा तो लाइन जहाँ पे वो सुमिरन का शब्द आता है, इसी फॉलो अप लाइन से आ और देवता चित्र धरे हनुमत से सब सुख रहे, सब सुख सह लहे तुम्हारी सुनना, जो तुम रक्षक आओगे डरना, और देवता चित्र धरे हनुमत से सब सुख रहे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो
1: सुबरे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबरे हनुमत बलबीरा.
2: तो मेरा बिलीव यही है जी कि सब जो है ना एंड ऑफ द डे नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऐसे हायर बींग थे. हम एक्चुअली उनको अवधूत जिनको बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको आपको एक्चुअली पता करना कि वो कहाँ किस लेवल पे थे आपके बस की बात नहीं है. आप बोल तो सकते हो, आप इमेजिन भी कर सकते हो, लेकिन आपके बस की बात नहीं, आपके रीत से बहुत बाहर है. तो लेकिन वो क्या सिखाते थे, वो क्या समझाते थे, वो क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने और सीताराम बोलने, सीताराम लिखने, राम राम लिखने पे ही ज्यादा जोर देते थे, और क्यों हनुमान जी की मूर्तियां लगाते थे, इसी सब में सब कुछ छुपा है. एंड प्रॉब्ली फिल्म हमारा हमें मैंने वही डिकोड करने की कोशिश पूरी फिल्म में की है.
1: वाह वाह. एंड ऑन डे 40 हनुमान अंश द नेट कलेक्शन स्टैंड एट 8.25 crore रुपीज. इफ आई मे, इफ वी कंपेयर इट टू धुरंधर विच अगेन वॉज अ स्पेक्टेकुलर फिल्म, 2.6 crore is what it got in the same period. Pathan was at 2.55 crore. So is this word of mouth publicity that has a bigger impact, Vishalji, than even those massive promotions?
2: I believe the massive promotions are done. If I can talk about the box office dynamics, what happens that when you have your film, a theatrical run for a week, first week, the film goes to people respond to the film that okay, it's a good film or it's a average film or it's a great film, and then from there the word of mouth picks. For that first week collection or first week people going to the theater, you need massive promotions. And because it's all across the country, and we face the problem I understood that it's not that easy game that you just simply release your film and then you expect people to, you know, just respond to it, and then they will start giving you word of mouth. Attention span is so less today, in today's time, that you can't expect people to, you know, go and talk about your film or like all the way they're asking, giving their testimonies. So, no, go watch this film. I will pay for you, this thing. So things like that started happening when people found that this film, it's a good film, and then it's reduced to 25 theaters, they are not getting tickets. And they are traveling from to some, because the locations of those theaters were so odd that people have to travel, some of the people traveled to 200 kilometers to watch the film. Wow. I've met such people.
1: Wow.
2: And this is happening the second week when they were getting word of mouth, and then they are not getting the movie to watch. So the demand surged so much. And the second week, the other two films, one of the film was not doing well.
1: Correct.
2: And because of which the theater owners, you know, started opening shows for Hanumanaj. And also the Cinepolis, who's the distributor, they were also pitching their film. And from there onwards, it never looked back. It kept growing only. As soon as they opened theaters, people just rushed and then they started watching the film. But in those first 2 weeks, the word of mouth grew. But we could have literally failed and, you know, fell on our nose. But somehow, you know, God saved it. So when you say miracle, yes, there is a sort of a miracle, nothing less than a miracle. But I'd like to thank everyone who has, you know, put their effort to make the reels and make, you know, talked about the film.
1: किसी दिल को छुआ होगा, लोगों के दिलों को छुआ, और इतने लोगों ने इसके बारे में बात की एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस. अच्छा, इसको अब आप कंपेयर कीजिए, व्हेन यू वेंट टू अपेरेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रिजेक्टेड हनुमान अंश, आई एम श्योर नाउ दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, बट वर यू डिसअपॉइंटेड व्हेन दे रिजेक्टेड द फिल्म?
2: दे डिडंट रिजेक्ट हनुमान अंश, दे रिजेक्टेड द स्टोरी ऑफ नीम करोली बाबा. सो व्हेन आई पिच्ड इट टू एन ओटीटी, which is one of the biggest OTTs. There are only few OTTs and one of the OTTs, I'll say. When they rejected, the story of Sri Nikori Baba. And that was very disappointing, not just because it's my story or I took it or it's a public domain story. But you know about him and you are from India, and why you're behaving so snobbish, and why you have to, you know, say such things. If you just look who all he inspired, and I'm telling that this guy has inspired the Apple's founder,
1: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ek bahut lambi suchi hai.
2: And who are you in front of, who are you in company? I'm not talking about the person. I'm saying whichever company it is, like, it can't be the Apple as just as a company is probably 500 times more wealthier and more, you know, it has more value. And the founder of that company was inspired by this man,
1: Neem Karoli
2: and
1: Baba.
2: The saint. So you just for that, the respect of this comparison which I'm doing right now, to understand where I'm working and what this guy, who all this guy has inspired. आपको उतने में ही थोड़ा modest रहना चाहिए, arrogant नहीं होना चाहिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं यार आप तो सिर्फ एक आप कैसे पॉजिटिव स्टोरी लेके आ
1: रहे हैं. और वहां पर कितनी गाली गलौज चल रही है और जिस तरह का अभी कंटेंट बन रहा है, नॉट दैट आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल, लेकिन क्या आप ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि इस समय देयर इज अ वाइडर ऑडियंस, देयर इज अ वाइडर ऑडियंस नॉट जस्ट फॉर भक्ति बट टू नो अबाउट द सनातन वे ऑफ लाइफ. हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, यू नो लाइन्स लाइक यू सेड, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुवरे हनुमत बल बीरा. पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज आर लाइफ ऑल अबाउट, एंड डू यू इंटेंड परसुइंग दिस फर्दर? अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है?
2: सो आई ऑलवेज बिलीव गौरव जी दैट देर इज अ इमेंस अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. And we are only catering to, I guess, 5% of them. It's 5-7% लोगों को ही हम cater कर रहे हैं. The possibilities of the footfall की possibility 40 करोड़ लोगों की कम से कम हिंदी में है. अगर आप 40 करोड़ को अगर आप धुरंधर has actually, you know, उसने वो उसको properly उसको पकड़ा था, और वो अभी भी मुझे लगता है धुरंधर ने भी अभी से भी चार गुना पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है. मेरा हरदम से मानना है कि अगर आप फैमिली कंटेंट नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑडियंस अपनी जो पॉसिबिलिटी है फिल्म की उसको आप यू आर रिड्यूसिंग टू 10%. इफ यू आर मेकिंग अ गुड फैमिली फिल्म यू आर यू नो मेकिंग देम यू नो आदि बोलते ना कि आदि बनाना होता है मेकिंग हैबिचुअल ऑफ गुड कॉन्टेंट विच यू कैन go and watch in the theaters.
1: Sapariwar, matlab gali galoch wali film, you don't want to watch them with your family. Or you, like you said, bringing three generations together.
2: So, and that will result into, and I always believed and I always told this, and I believe that from last 7 years, I've been trying to make content which is not negative, which is not vulgar, which is not abusive, which binds people, which is not on the creating, you know, factions, creating, you know, division in the society. And the beauty about our film is that it doesn't antagonize anyone. It doesn't have any negative character in the entire film. There is no villain in the film. There is no three-act story. There is no big hero. So the beauty about this film is Probably it's the simplicity which people are saying, that it is a simplicity which they're liking. And I believe that in that simplicity, there was really relatable content for the families. And that's what worked for them. And obviously, our belief system. So when you say Sanatan and when you say our family system, our culture, we need to, you know, draw the bigger lines. And we say that, you know, don't compare yourself. Do not get into this. There is this possibility of this also. I'm not saying that you should not open up, you know, the cases or problems which are very, very problematic for the society.
1: True.
2: But I'm saying if you can also, and but you'll have to also tell that this is the library we are working with from last 5,000-7,000 years. We have plethora of stories, plethora of magnanimous, you know, stories and content and ideas. You will have to just explore and figure out that how you can, you know, customize it and say it in a way that people love it.
1: So tell me about your next project, because I believe your next project is also spectacularly beautiful concept.
2: So I believe that since the film is about Hanuman Chalisa, and Neem Karoli Baba was also, you know, pressing a lot of people about Hanuman Chalisa. I am also a Hanuman Bhakt. I also run a Hanuman Chalisa club on Clubhouse from last 5 years.
1: Kya baat hai.
2: So people from worldwide, they come and then chant Hanuman Chalisa over there. Even today, the club is working. My Hanuman Bhakti has brought me to Hanuman Ansh and to Sri Neem Karoli Baba. And my Hanuman Bhakti will definitely take me to Tulsidas Ji, because that's the source.
1: Absolutely. Absolutely. How beautiful. So what you're doing, Dr. Chaturvedi, and I must delve on this for a moment. This is Bharat's civilizational knowledge and gyan that you're taking to future generations. Matlab, aap Goswami Tulsidas ka jab unki charcha kar rahe hain, to recently during Operation Sindoor, Air Marshal Bharti, he quoted those immortal lines of Goswami Tulsidas. Ramchandra ji jab Lanka ja rahe the, Sita ji ko lane ke liye, aur samudra raasta nahi de raha tha, to Vinay Namane jaldi jad gaye, teen din beet, bole sako paramatab. भाई बिन होए न प्रीत, मतलब इतनी पावरफुल लाइंस है सर, ये हमारे कल्चर के बारे में, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, आप तो उनके पूरे जीवन के बारे में लिख रहे हैं
2: जी. और ये सुंदरकांड की लगभग आखिरी दोहा है, मतलब आखिरी या लास्ट पार्ट वन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वेरी ब्यूटीफुली तुलसीदास जी नो राइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, When Vibhishan comes and he tells ke, you can do this and you can do that, and Lakshman ji is saying dev dev alasi pukara, we jo log devta devta karte hain wo alasi log hote hain, you should just go and you know, we should hame prachai kar dene chahiye, or immediately we should. And Vibhishan batate hain ki aapke kulguru hain samudra jo hai na, inse aap vinti kar lijiye to ye rasta bana denge aapke liye. तो मतलब गए तीन दिन तक भगवान राम मर्यादा का, क्योंकि वो कुलगुरु भी हैं उनके, तो वो उनके मर्यादा के लिए 3 दिन वेट करते हैं. और सबसे खूबसूरत बात यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान जी और राम भगवान राम के बारे में जो बात मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि वो हरदम एक अपने हर जगह पर उन्होंने क्या बेस्ट हो सकता है, हर व्यक्ति की मर्यादा रखी, छोटे से छोटे व्यक्ति की मर्यादा रखी, और वो कभी छोटा और बड़ा उन्होंने उस तरह से गिना नहीं. और यही सबसे खूबसूरत, लेकिन जब जरूरत आवश्यकता पड़े तो फिर आपको धनुष बाण उठाने पड़ेंगे जी, फिर तो कोई रास्ता नहीं. पर अगर वो सप्रेम निपट सकता है और मर्यादा में रहते आप का अनुसरण करते हुए अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, इट्स ब्यूटीफुल.
1: और यही बात आप भावी पीढ़ियों तक ले जा रहे हैं, यू टेकिंग दिस टू फ्यूचर जनरेशंस ऑफ भारत. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई मीन, यू आर अ डॉक्टर एंड यू रियली नो व्हाट एल्स द सिस्टम एंड व्हाट इज द वे टू ट्रीट इट एज बेस्ट एज पॉसिबल. डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस इंडिया फर्स्ट स्पेशल ब्रॉडकास्ट. मेनी थैंक्स.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है.
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी. मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां.
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआर.
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा.
8: Do food labels really tell the truth? Instant soups, breads and snacks often mask harmful ingredients behind clever marketing. High sugar, salt and fat are disguised as moderation. The Supreme Court ruling has put packaged foods under strict scrutiny, raising urgent questions about consumer safety. India Today uncovers how misleading claims put millions at risk and what this means for your plate. Read the full story in the latest issue of India Today, Making Sense of India, now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe at subscriptions.intoday.in.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: इनमें लगभग जो है करीब 70 से 80 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मुझे मुझे तो लगता है कि अब इंडस्ट्री के पास आएगा रेवेन्यू, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे ज्यादा, और छोटे शहरों में जा पाएंगे, ज्यादा मर्चेंट्स को ये कर पाएंगे, डिजिटाइज कर पाएंगे। कस्टमर साइड पे भी टीपैप्स को भी पैसा मिल रहा है फाइनली 6 साल बाद, तो हम सब जो है और मार्केटिंग कर पाएंगे और यूज केस ला पाएंगे।
1: यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बहुत स्केल हो गया है, सभी लोग यूज करने लग गए हैं। बट अब इसका जो स्केल इतना हो गया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक्स और पेमेंट कंपनी सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और जो आम इंडियन है, जो इंडियन ग्राहक है, उसके लिए बिल्कुल भी न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Very good morning, viewers. Welcome back. You're watching India Today. And as we speak, this hour we bring to you the burning question. This is me, Sriya Kundu, and we'll be taking you through one of the biggest stories in the domestic arena today, which is the Prime Minister's 76th birthday. While we're wishing him a very happy birthday, it is an action-packed day across the country as celebrations will be unfolding everywhere from Delhi to Gujarat and his parliamentary constituency, Varanasi, of course. The mood is no less than a festival itself. On his birthday, Prime Minister is all set to launch the fifth edition of Semicon India event in the national capital. This, while the BJP has appealed to people to light an Ashirvad Kadiya as part of the birthday celebrations. The BJP's month-long Seva Abhiyan also, remember, begins today with a focus on public service activities. NDA allies, meanwhile, will all be coming together in Varanasi itself. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and Chirag Paswan are among those expected to attend Prime Minister Modi's birthday celebrations in his parliamentary constituency. Rajnath Singh and the Uttar Pradesh Chief Minister will also be flagging off a bike yatra. In Gujarat, Home Minister Amit Shah will flag off the Vadnagar to Varanasi bike yatra from Prime Minister's birthplace at 9 a.m, followed by a cleanliness campaign. He will also be attending the Ashirvad Kadiya event in Ahmedabad in the evening, and from Kashi, before all of these celebrations already are set into rolling, ahead of the birthday, from Kashi comes a deeply personal birthday tribute. It's an artisan who's handcrafted a portrait of the Prime Minister seeking his late mother's blessings. Take a look at the responses that have come in and poured in, wishing the Prime Minister a very happy birthday.
1: नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में लाल किले की प्राचीर से इस देश की जनता को परिचय कराया. संविधान दत्त शक्तियों का गरीब कल्याण के माध्यम से हर गरीब तक उसके जीवन स्तर को उठाने में उपयोग करना, संविधान दत्त शक्तियों को देश को एक आर्थिक प्रमुख अर्थतंत्र बनाने के लिए उपयोग करना.
2: इस वर्ष का यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि राष्ट्र सेवा के उनके 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इन 25 वर्षों में उनके सेवाभावी नेतृत्व ने देश को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई गति दी है. करोड़ों भारतीयों के जीवन में उम्मीद, अवसर और बदलाव की एक नई रोशनी जगाई है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के इन 25 वर्षों के गौरवपूर्ण सफर के सम्मान में आइए हम मिलकर आशीर्वाद का एक दीप जलाए.
3: एक माह के 10 दिन आंगन मिलन कार्यक्रम होंगे. यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव माता बहनों के सशक्तिकरण, सम्मान और विकास की प्राथमिकता देते आए. ऐसे में सेवा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के हर एक सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है और ये सेवा संकल्प अभियान माता बहनों के सशक्त बनाने के लिए सशक्त मध्य प्रदेश की तर्ज पर हमारी सरकार भी काम कर रही है.
4: 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ये आप सब लोग जानते भी हैं. मगर इस बार का जन्मदिन हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो पब्लिक ऑफिस का जर्नी 25 ईयर्स कम्प्लीशन होने वाला है. 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम पूरे अरुणाचल प्रदेश में चलाए जाएंगे और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारा महिलाएं हैं, जितने भी जो हमारे किसान हैं और सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को टच करते हुए ताकि भारत सरकार, राज्य सरकार का स्कीम्स और भी उनको पहुँचाने का कार्य भी हम लोग किया जाएंगे.
0: A On that note, viewers, we have some breaking news that's coming in that we will shift our focus to. This is TVK MLA miffed over Tamil star's remark. Vijay Sethupathi's leadership remark has upset the TVK. Sethupathi spoke on leadership on Big Boss show. TVK MLA says, and I quote, Sethupathi paid by other parties. TVK MLA to Sethupathi speak responsibly. Sethupathi's Big Boss remark has now come out to spark a massive row. Actor had said, leader doesn't blame the opposite team. Running away is not a leadership quality. Leader doesn't give tall promises and then blame others. That's the very comment that had been made by him, which the TVK MLA is now come out. They have now come out to, in fact, express disagreement and disapproval over. Let's quickly listen in to what was said by this particular MLA that we're referring to.
5: அது வந்து ஒரு கேளிக்கை நிகழ்ச்சிங்க. பிக் பாஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஜாக்பாட்டா இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு 100 நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட வந்து சேலரி மதிப்படி வந்து ஒரு 75 கோடி டு 80 கோடி அவர் வாங்குவார். அதை விட ஒரு 10 மடங்கு வந்து மற்ற கட்சி நம்ம ஆட்டு கட்சி கொடுக்கும் அப்படிங்கும் போது அவர் நடிகர் தானுங்க, எல்லாம் எதுக்காக வரும், அவங்க அவங்களோட வருமானம் வேணும் வளரணுங்கிறதுக்காக வரும். அது நகர் ஏதோ கொடுத்ததுக்கு வந்து அவர் பேசியிருக்காரு. அவர் கொடுத்த விஷயத்த வந்து அவர் வந்து நிறையவே பேசிட்டாருங்க. இதை வந்து நம்ம விஜய் டிவியில் கேட்கும்போது நம்ம வந்து முதல்வரை வந்து நோக்கி பேசலை. நாங்கள் வந்து யாரையும் வந்து எப்படி சொல்கிறது, நாங்கள் அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்கள பேரை கெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் பேசலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பட் இது ஓப்பனாக சொல்லப்போனால் வந்துட்டு இந்த வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற வேலை தான் அதை அவர் பண்ணியிருக்காரு. நாங்கள் வந்து அதை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து அரசியல் விமர்சனம் யாருனாலும் பண்ணலாங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் இருக்கும்போது கருத்துரிமை அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா வந்து இருக்கும். நம்ம வந்து அந்த ரைட் டு ஸ்பீக் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அது நீங்க பார்த்து கொஞ்சம் விஷயங்கள் வந்து பேசினா நல்லா இருக்கும்.
0: So that's what the TVK MLA has to say, that one should speak responsibly, especially when speaking on platforms like this. And she's even gone ahead to make a claim of the fact that this actor, that is Sethupathi, might have been paid by other parties, and which is why he has come out to say such things. At the end of the day, it's now sparked the remarks that's been made by Sethupathi has in fact sparked a massive row. And the TVK is clearly miffed with those very remarks. Sethupathi had to speak about the leadership at this given point. A veiled attack of sorts that one can in fact take a look at it as. Now, Pramod Madhav is joining us on the broadcast with more details on the same. Pramod, how are we looking at the two sides of this entire debate right now? One, as to what Sethupathi himself has come out to say, and on the other hand, how the TVK is now miffed at his very remarks.
6: Monishraya, the important aspect here is that, like Vijay Sethupathi was talking inside a closed community on a show called Big Boss, where apparently there was a kind of a program related to democracy and how a leader should be. And this is where he said that, you know, not knowing what are leadership qualities and trying to be a leader, and when some kind of issue arises, you blame the opposite team and try to run away. That is not leadership quality, that is cheating. And now for this, TVK's Kanimari Santosh has openly reacted, claiming that Vijay Sethupathi is earning 75 to 80 crores during Big Boss 100 days. And if other parties are offering him money, of course, being an actor, he would definitely take it. We are all here to earn. And then she says that, like, whatever money that has been offered, in a way, kind of saying whatever has been offered to him, Vijay Sethupathi has spoken more on that. And she then claims that, yes, everybody has a right to they have, like, political criticism and such, but it should be done either carefully or responsibly. That is how TVK has reacted to it. The private television network very clearly says that this was not targeting anybody or any organization, but right now it looks like TVK is taking it in a different form here right now, Shreya.
0: Right, Pramo. Thank you for bringing us all of those details and putting it into context for our viewers. On that very note, viewers, let me go across to Aba Bakaya of Business Today TV with all of the updates of this market in this business show. Aba, very good morning to you and over to you.
7: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
8: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can file. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
9: Presented by National Stock Exchange.

0: This is a primary school in Raghunathpur village in Bihar's Katihar district, among the worst hit by floods. While the school is shut, a private tutor has taken the initiative to ensure the learning does not stop. Mohammed Sahib conducts classes on a boat.
1: जब कोचिंग में पानी घुस गया, पानी घुसने के 2-3 दिन तक तो हम पढ़ाई ठप कर दिए, लेकिन लगा कि नहीं पढ़ाई रोकने से तो बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। इस वजह से हम सोचे कि चलो बच्चों का हम सब नाव में हिला करके हम लोग क्या करें, शिक्षा ग्रहण कराएं बच्चे को। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो भी स्किल रहेगा डेवलपमेंट होता रहेगा, और ऐसे रुक जाने से क्या होता है कि जो पढ़ाते हैं वो भी भूल जाता है बच्चे।
0: The students claim their homes are also underwater. The school kids say their parents have allowed them to attend classes as the water is shallow.
2: क्यों नाव पे पढ़ाई करते हो, डर वर नहीं लगता?
3: नहीं, यहाँ कम पानी है और पूरा गांव में पानी हो गया, घर में, रोड में, सड़क में, कोचिंग में, सब जगह पानी हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ सर यहाँ लाके पढ़ाते हैं।
2: यहाँ पे किसी तरह का कोई डर वर लगता है?
3: नहीं, यहाँ पे पानी कम है इसलिए डर नहीं लगता है।
2: तो फिर ऐसे में सर कितना देर पढ़ाई करवाते हैं?
3: 1-1.5 घंटा।
2: पढ़ने में मन लगता है?
3: यस।
2: बाढ़ है, बाढ़ में घर में भी पानी है,
3: है।
2: पढ़ना जरूरी है।
3: हाँ।
0: While the floods have derailed schooling in many parts of Bihar, in Raghunathpur, Mohammed Sahib has kept the light burning. With Bipul Rahul, Bureau Report, India Today.

0: The UPI notification has become the latest flashpoint between the Narendra Modi government and the opposition. The move has drawn sharp criticism from the Congress party, which has dubbed the 0.4% MDR on UPI transactions above 2,000 rupees, the Modi tax. The party says the Prime Minister popularized UPI and sought credit for building a cashless economy, but now is effectively taxing people for using it. Leader of opposition Rahul Gandhi has once again accused the Prime Minister of being compromised, alleging that he is surrendering to US pressure.
1: Ye kadam jo hamare indigenous, hamare homegrown digital payment ka ecosystem hai, usko tabah karne ki disha mein ek kadam hai. Kyunki America ko hamara MDR regime nahi pasand aa raha tha. America hum par dabav dal raha tha. Aur ho sakta hai hum अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं, ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं.
0: The BJP has hit back, calling the Congress a झूठ की दुकान and accusing it of spreading fake news over possible charges on UPI transactions.
2: देश का आम नागरिक 50% of global financial transaction 11 countries के अंदर यूपीआई के माध्यम से भारतवासी और बाकी लोग कर रहे हैं और ये आगे और भी बढ़ेगा और शायद यही सक्सेस राहुल गांधी के मन में एक हीन भावना पैदा करती है और कांग्रेस के मन में हीन भावना पैदा करती है और इसीलिए कांग्रेस यूपीआई पे झूठ फैला रही है.
0: The BJP maintains that person-to-person UPI transactions continue to be free. The message from the government is clear. Aam aadmi will not be burdened. But how pocket-friendly will UPI remain? Only time will tell. Bureau Report, India Today.
3: Python panel, one board, infinite users.
4: Mutual funds, sahi hai.
5: Girnar, ek chai ho jaye.

0: of others. So, you know, the IT industries that are working in, I mean, operating in Bangalore, Hyderabad, you know, and other major cities, the same should have been working in Kerala. The same should have been operating from Kerala, because if you see the IT professionals working in Bangalore or say Hyderabad,
1: a lot of them are Malayalis.
0: Yeah. I mean, so why can't we have the same in Kerala? So I would say we missed the opportunity, we missed the bus, but it is not too late. We still have to catch up. And I also feel, I mean, with regard to education, if you remember the previous UDF government during Sri Uman Chanti ji's time, that government actually wanted to bring private universities into Kerala. The government also initiated the process, but there was a lot of resistance from the opposition. So the bill, I mean, the idea was brought probably like, you know, towards the end of the UDF government. They tried to bring private universities into Kerala and to bring in a legislation. And there was a lot of resistance from the then CPM and LDF. And the UDF government could not take it forward.
1: So what stops that from happening now?
0: Yeah, so and then... Then we had for the last 10 years the same LDF government, and the same government that opposed private universities during Uman Chanti's time, after 10 years they realized that no, it was a mistake, and no, the state required private universities, and the last government say towards their end of the tenure they introduced the private universities bill in Kerala. And now it is not a reality yet, because the governor has sent it to Honorable President's assent, and it is still pending. Yesterday's cabinet meeting there were issues with the existing the legislation that the previous government passed, previous assembly passed, and so we have decided to recall the legislation that was passed in the previous assembly, because it is pending with the President of India. And now, in the next assembly session, we will bring in the new legislation. So we have to have a lot of reforms in all sectors, including education, and this government is committed to do that. You will see a lot of reforms happening during the tenure of this government.
1: That's good to know, especially because you also acknowledge that there are challenges.
0: There are
1: issues that need to be addressed immediately. A large part of education and bringing those changes and that reform, sir, is also cooperation with the central government. You met with Mr. Prahlad Joshi last week. What is the state government's plan here? You know, because you see very often there's a collision course on education between center and state. Is the Keralam government planning to work in tandem with the center to bring these changes?
0: See, politics and administration are two different things. On political front, we have got differences with BJP and their ideology, and we will continue to fight and we will continue to differ. But as governments, I mean, we are part of the government, and as a minister of state, it is my responsibility to get maximum funding from the central government, because it is our right. We are not going there as beggars, or no, we are not requesting for anything. It is our right to get sufficient share of funds from the central government and the central ministry. So I would say all the departments will have to work in coordination with the central government, the concerned central department, to ensure that we get maximum funds and our developmental needs are met. So on that part, we will definitely see areas where we can work together, and you know, we'll definitely see projects that we can get funding for. And I mean, when I met the Honorable Central Education Minister, Mr. Prahlad Joshi, I submitted him a proposal, and we have made a lot of requests before the central government. I even requested for, I mean, you know that the previous, I mean, the last budget, the central government has announced five university townships across the country. So I've made a presentation, and I've requested him, and I've told him that Kerala is the right place for that, and one of it should be in Kerala. So our attempt is to get maximum support for the development of the state from the central government. That we will continue to do.
1: What about PM Shri then? Because the center says if you're not on board for the schemes, we can't release all of those funds.
0: No, PM Shri, we have, our Honorable Chief Minister rightly said, it is not that, I mean, our government did not sign the agreement. The agreement, the PM Shri agreement, was signed by the previous LDF government. That too, not even informing the cabinet, the previous government signed the agreement, PM Shri agreement. And when our government took charge, the issue came before us, and the cabinet subcommittee was constituted. And I've read the entire, say, the contract and the agreement that the government has signed. In the agreement that the previous government signed, there is no provision for the state government to withdraw from the PM Shri agreement. The sole right to withdraw from the agreement rests with the central government. So we have no option to withdraw from the PM Shri agreement. And now the cabinet subcommittee is constituted, and we are discussing the matter. We are seeing how, you know, what we can do and how we can take it forward.
1: So you are okay with the program, but with terms and conditions.
0: Yeah.
1: Is that ideal thinking? How do you get the center on board for something?
0: Yes, we will determine the terms and conditions. We will not compromise on our political ideology and state's interest. We have to, I mean, on deciding curriculum, no compromise, the state will decide. Selection of schools, state will decide. So that is the position that we have made. And the subcommittee is yet to finalize its report. You wait for the final report.
1: But isn't this idealistic thinking, sir, that, you know, we will tell the centre that we're okay with this program, but here's our condition, and then the central government comes on board. That right there will lead to, again, a contention between the centre and the state.
0: Of course, ours is a federal system. In a federal system, we have state governments, we have central government, and the state government has got every right, because we know that education is in the concurrent list. So, the state has got the right to decide the curriculum, and we will not compromise on that. That is our political stand.
1: You've made a difference saying that, you know, two governments working together for the people versus ideological differences. The last few weeks, you've been very vocal against vice chancellors and their show of neutrality. You believe that it's against the principles for a vice chancellor to attend an RSS program. Why do you think that, sir?
0: See, vice chancellor should be above all sorts of partisan politics. Vice chancellors we see as a very respected position, and they should not be party to any political, I mean, they should not become part of any political ideology. That is what we feel. See, I will not invite a vice chancellor to a Congress party function, because we feel that that is not the job of the vice chancellors.
1: The RSS, they say, is not a political party. So
0: yeah, they are doing, you know what they are doing. They are doing all political activities. So we will see, we don't invite vice chancellors to our political functions or Congress party functions. That is the position that we have taken. And that is the position we have always, that used to be our tradition also. So vice chancellors, our position is very clear. They should not attend any political function. They should not attend an RSS function or a Congress party function or a communist party function. They should be completely neutral, and they should stay away from all this. And we have always fought against this sort of communalization of education, and the RSS trying to intervene in our education system. I used to be national president of NSUI, and we used to have a lot of struggles during those times, and our position is still the same. So that is why I have to make some statements against the vice chancellor. This is nothing personal, but this is completely on a principle that vice chancellor should be beyond all this.
1: Do you think that the appointment of vice chancellors is turning increasingly political, that they have a political color to them?
0: Yeah, of course, because there is some confusion existing, because we don't have permanent vice chancellors in many universities. Because the search committee has to be constituted, and there is the legal framework for the same has to be in place. And we feel that at the end of the day, when we live in a democratic system, the will of the elected government should prevail. And no one has the right to interfere with that. And whether it is in the field of education or for that matter any other field, the state government has got its authority, and the education department has got its authority, and the government should be allowed to function in that way. That is our position.
1: When I mentioned the education model in Kerala, I spoke of inclusivity. I spoke of the leaps that Kerala has also taken in ensuring that, you know, the female and the girl students are also involved in curriculum activities. You see that very, very evidently in Kerala. You put up a post recently, right after Rahul Gandhi, where you also spoke of smash the patriarchy. Is that something that's practiced, though, in Kerala and in Kerala politics?
0: No, we see that, I mean, we always speak about equality, but we know the reality. There is always, you know, girls have to face inequality and a lot of challenges in many places. But our attempt is to ensure that equality exists in all the fields. In the field of education, in the field of employment, in the field of, say, for example, political representation, everywhere women should get adequate representation, and that is how we can empower women. So in education, as you rightly said, we have more girl students than boys in Kerala. Of course, the demography is also like that. So we have number of women's colleges and institutions. We will try to provide them with whatever support we can so that our girls get better education. And the government is also trying to promote that in whatever ways possible.
1: It's in different ways. You know, you'll have the same uniform for both the genders. There was a lot of talk about a different kind of classroom structure, of changing the way students are seated and ensuring it's mixed seating. Very often, therefore, Kerala's education model is referred to as the woke education model.
0: We live in 21st century and we can't have the same systems that we used to follow in 19th century. So the society has progressed, society has advanced, women are doing extremely well in all the...
2: And let's now listen in to Prime Minister Modi, who's inaugurated the Semicon India 2026, and he's now speaking. Let's listen in.
3: CEOs, delegates, and virtually hamare saath sainkdo universities or institutes ke भारत के भविष्य ऐसे मेरे नौजवान साथियों यहां उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों देवी और सज्जनों सेमिकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं विदेश से जो अतिथि आए हैं मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं साथियों आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है और संयोग देखिए आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन यही आत्मनिर्भर भारत की विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है फ्रेंड्स विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में ठीक 10 दिन पहले मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइन से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है और अब ये भी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है। लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स, आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं। आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एनी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका की एक कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाए हैं, तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1,00,000 इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अभी आपको बताया गया, इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए, कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते 2 वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा एआई से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप एआई पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां हैं, वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भरता के इस महायज्ञ में पूरे विश्व को एक नया
2: मिनिस्टर इंक्लूडिंग दैट बिग मेक इन इंडिया मैसेज एज ही एड्रेस्ड द सेमीकंडक्टर एक्सपो Semicon India 2026, where Prime Minister put out that resounding message of Make in India. He spoke about how India is developing and growing at a very fast pace, where he also gave several tips to the youth, talking about the dedicated freight corridor to improve development. And big Semicon Expo on Prime Minister Modi's birthday, where at Semicon India 2026, Prime Minister putting out that big Make in India message, saying India's chips are powering world supply chain. Prime Minister Narendra Modi also saying that power and energy security are key for India's growth and development. Young engineers who are skilled for chip designing. Prime Minister putting out that message to the youth, saying that students gifted me the chips they had designed. Prime Minister's message of Vikas coming out loud and clear, where Prime Minister Modi appealed to the youth that they must help in India's growth, and the energy sector is where we must focus and concentrate. Power and energy sector must be the key focus for the youth of India. Also saying that young engineers are skilled for chip designing. Prime Minister putting out the big message of Make in India, and while he addressed the youth at Semicon India 2026, he appealed to the youth to help in India's growth, to understand the key focus points, to really concentrate on power and energy security that he said are key for India's growth. Prime Minister putting out that loud message of Make in India once again, inspiring the youth to say that come out, focus on India's growth. As he said that India is eyeing commercial production, and Prime Minister putting out that message to all the talented engineers to say that we are a big pool when it comes to the talent that India has of engineers, of those who are skilled in the technical sector. He said that we need to strengthen the energy sector further. Where we are at is not enough. He also spoke about growth and development, 3,000 kilometer long freight corridor that is fully operational. Prime Minister Narendra Modi harping on that message, where he said that he spoke about semiconductors and chips that the youth had particularly gifted him. And he said that the world's trust is increasing when it comes to the sort of talent that India has, how India is growing. He said that India was lauded even at the BRICS summit, and once again, where he put out a strong and inspirational message to the youth to also show them the way forward towards a Viksit Bharat, the 2047 vision, where he said that the youth of India must focus and help in India's growth. They must join the R&D sector. Let's listen in to some of the excerpts of Prime Minister's address.
3: विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में ठीक 10 दिन पहले मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ, इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की, सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
2: As Prime Minister Narendra Modi turns 76 today, celebrations are unfolding across the country from Delhi to Gujarat and his parliamentary constituency Varanasi. The mood is no less than a festival. On his birthday, Prime Minister launched the 5th edition of Semicon India event in the national capital. This while the BJP appealed to people to light an Ashirwad ka diya as part of the birthday celebrations. The BJP's month-long Seva Abhiyan also began today with a focus on public service activities. NDA allies meanwhile came together in Varanasi. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and Chirag Paswan are among those who attended Prime Minister Modi's birthday celebrations in his parliamentary constituency. Rajnath Singh and the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath who also flagged off a bike yatra. In Gujarat, Home Minister Amit Shah flagged off Vadnagar to Varanasi bike yatra from the Prime Minister's birthplace, followed by a deeply personal birthday tribute. An artisan who handcrafted a portrait of Prime Minister Modi, seeking his late mother's blessings.
5: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
6: देश के प्रधान सेवक को उनके यश जन्मदिन पर बधाई देता हूं, दीर्घायु होने की कामना करता हूं, यशस्वी होने की कामना करता हूं। साथ ही साथ आज उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में हमारा जो अभियान चल रहा है सेवा संकल्प अभियान का, उस अभियान का शुरुआत आज हो रहा है। आज रक्तदान के माध्यम से देश भर में हजारों भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान महादान के मंत्र से इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
7: भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पावन जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से जन्मदिन की हृदय से बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना बाबा गोरखनाथ और भगवान विश्वकर्मा से करता हूं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन जन सेवा से देश सेवा के संकल्प का प्रतीक रहा है। कोरोना महामारी हो या आज की वैश्विक चुनौतियां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर परिस्थिति का डट कर सामना किया। आज देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के संकल्प के साथ नई ऊंचाइयों की ओर से बढ़ रहा है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस के अवसर पर आइए हम सब उनके दीर्घायु यशस्वी जीवन की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें और सायंकाल शाम को आज 6 से 7 बजे के बीच में आशीर्वाद का दीप जलाइए। यह दीप प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारे स्नेह और शुभकामनाओं का प्रतीक बने और साथ ही विकसित भारत के हमारे सामूहिक संकल्प को नई रोशनी दे। माननीय मोदी जी आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश ग्रेट डेज अहेड फॉर भारत अंडर योर एबल लीडरशिप।
9: नमस्कार। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस दिन को हम पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में आज भारत आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के संकल्प की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ देश के युवाओं और महिलाओं के लिए भी शिक्षा एवं रोजगार के नए विकल्प निर्मित करने का अवसर मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के युवा और नारी शक्ति के सामूहिक प्रयासों से 2047 तक विकसित भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर इन्हें स्वस्थ, दीर्घायु और राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर ऊर्जावान रखे।
10: प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं मेरे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे कैसे कालखंड में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली, जब नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने देश के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच रखी।
11: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हम सब यहाँ पर 108 कुंडिया हवन अभी हमने संपूर्ण किया है। बाबा श्याम खाटू वालों के चरणों में हमने प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश सेवा में वो इसी तरीके से लगातार काम करते रहे, इसकी कामना की है।
12: आज भगवान विश्वकर्मा जयंती, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन और सेवा दिवस के पावन अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। आज से इस योजना के नए लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। अब प्रदेश के 1,80,000 रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की सभी पात्र बहन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं हर पात्र लाडो से आग्रह करता हूं कि आप अपना पंजीकरण अवश्य कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। अब हमारी हर पात्र लाडो के खाते में हर महीने 2100 रुपए आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार माताओं बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है।
13: आज 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस विशेष अवसर को पूरा राष्ट्र सेवा संकल्प अभियान जन सेवा ही प्रभु सेवा के रूप में मना रहा है। सभी आज 17 सितंबर को राजस्थान के हर घर, हर गांव, हर शहर में आशीर्वाद का दिया प्रज्वलित करें। आज शाम 7 बजे अपने घरों एवं प्रमुख स्थानों पर दिया प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की मंगल कामना करें।
14: 1 माह के 10 दिन आंगन मिलन कार्यक्रम होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव माता बहनों के सशक्तिकरण, सम्मान और विकास की प्राथमिकता देते आए हैं। ऐसे में सेवा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के हर एक सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है और ये सेवा संकल्प अभियान माता बहनों के सशक्त बनाने के लिए सशक्त मध्य प्रदेश की तर्ज पर हमारी सरकार भी काम कर रही है।
15: 17 सितंबर हमारे देश के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ये आप सब लोग जानते भी हैं। मगर इस बार का जन्मदिन हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो पब्लिक ऑफिस का जर्नी 25 इयर्स कम्प्लीशन होने वाला है। 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का कार्यक्रम पूरे अरुणाचल प्रदेश में चलाए जाएंगे और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारा महिलाएं हैं, जितने भी जो हमारे किसान हैं और सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को टच करते हुए, ताकि भारत सरकार, राज्य सरकार का स्कीम्स और भी उनको पहुंचाने का कार्य भी हम लोग किया जाएंगे।
2: Prime Minister Narendra Modi touched by Aashirwad Ka Diya song. Prime Minister Modi reacted to the song by musician Aman Pant that was released on his birthday. Prime Minister Modi said, some gestures remain very special. Aashirwad Ka Diya is one such expression of affection that has deeply touched me. Every blessing strengthens my resolve to serve our beloved Bharat with even greater devotion.

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंग्स मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA। अब मैं क्या ही बोलूं?
3: परिवार अटूट भरोसा।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी। इट्स अ न्यू चैप्टर इन केरला, अ न्यू लीडर, अ न्यू प्रॉमिस। व्हाट इज वीडी सतीशन्स विजन फॉर केरलम, द केरलम ही ड्रीम्स ऑफ, द पॉलिटिक्स दैट विल शेप इट एंड द रोड अहेड। Catch the India Today Roundtable Keralam, 17 September, all through the day, only on India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सर एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
1: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं, और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं, तो ये जनरल मीडिया जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा।

0: यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और इसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो उसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। तो राहुल गांधी ने कैसा उनको मालूम हुआ कि हमने तो पैसा उनका ब्याज ले रहे वो बढ़ा रहे करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: 2000 रुपये तक आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा और उसके ऊपर भी 96% आइटम्स पे आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा, और मर्चेंट जो है अगर वो पे कर रहा है कंज्यूमर नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है इसको और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार में मीडिया के मित्रों को और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको और केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए, ताकि ये जो भ्रम और भय की स्थिति कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करती है वो नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि जो दुनिया के सबसे बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स कोई देश करता है तो भारत करता है। लगभग 50% पेमेंट हम लोग करते हैं।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का
3: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
0: अब मैं क्या ही बोलूं।
4: परिवार अटूट भरोसा।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
7: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: 5 डिस्टिंक्ट फेसेस, 1 कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस। सुपर 6, sharp questions, zero distractions.
10: You also speak of poor children. Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
9: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
11: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking. Our Pakistan army is unable to control the situation.
9: India first, where decades of experience speaks.
12: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
9: News Today, exclusives that shape the headlines.
13: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
9: Newstrack, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप्स बन रही हैं, उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां है वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। 2 से 160,

0: साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सर, एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
4: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं। और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया, जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से, तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं। तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखा?

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
2: इसीलिए सेनको इंडिया का
5: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
2: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सर एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
1: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं, और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा।

0: सर एफएनओ का भी जो पूरा डिटेल विस्तृत डेटा सेबी के द्वारा पब्लिश किया गया है सर, उसके हिसाब से सर आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी बड़ी फाइंडिंग है जो लोगों को भी समझनी चाहिए और सेबी ने भी अच्छे से समझी है सर?
1: नहीं, जो आप एफएनओ स्टडी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नहीं उसमें तो सारे बातें बहुत स्पष्ट हैं, और इस बार तो जो हमने स्टडी किया है उसमें हम ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हमने काफ़ी रिसर्च फाइंडिंग्स दी हैं कि काफ़ी 3-4 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी कंटिन्यूड लॉसेस में रिटेल बहुत सारे लोग हैं। तो ये जनरल मीडिया जनरल पब्लिक को समझने की बात है कि क्या यदि वो उस मार्केट के लिए तैयार नहीं हैं ठीक तरह से तो क्या उन्हें उसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लॉसेस कंटिन्यूसली उन लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या वो उसमें रहना चाहेंगे जहां उनके बार बार आने से भी उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखा।
2: It's in different ways, you know, you'll have the same uniform for both the genders. There was a lot of talk about a different kind of classroom structure, of changing the way students are seated and ensuring it's mixed seating. Very often, therefore, Keralam's education model is referred to as the woke education model.
3: We live in 21st century and we can't have the same systems that we used to follow in 19th century. So the society has progressed, society has advanced. Women are doing extremely well in all the fields. I mean, we see how they perform in politics, in business, in media. I mean, in you name any profession, you see the performance of women there. You can't differentiate there. So we, how can we differentiate them in education institutions? Educational institutions are the, I mean, is the first place where they learn the principle of equality, the principle of women empowerment. So we will try our level best to ensure a system where our girls feel safe and secure in college campuses.
2: So you will also then condemn comments where they say women should stay at home, women should be boxed up, women shouldn't step out?
3: I already condemned it. Probably I was the first one. To openly do that.
2: Yeah. You think that those kind of statements have no place in Kerala?
3: Those kind of statements have no place in Kerala nor in India. And I don't think anyone would accept something like that.
2: I'm glad you've said that openly.